हे हनुमान जी, हे हनुमान बाबा, यू आर द वन दैट इज एबल टू रिड्यूस अ सेवियर फ्रॉम व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद इन आवर लाइव्स. यू आर द फॉर्म ऑफ भगवान शंकर. हे प्रभु, हूएवर इज ब्लेस्ड बाय यू इज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज इन लाइफ. ऑल वरीज फॉल, ऑल ट्रबल्स लीव्स. हे प्रभु, श्री राम कथा कंटिन्यूअसली रिजाइड्स.

0: सकुल श्री सिद्धि विनायक स्वामी की जय। श्री आवरदाम चंद्र की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय सीताराम भगवान।
1: 102.7 FM आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।

0: ये बालक सच कहते हैं, अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा।
1: सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है।
2: केवल पार्टी करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता, प्रजा को कुछ करना चाहिए।
3: क्या कर सकती है ये प्रजा?
2: सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए, वो जहाँ भी है उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए।
3: सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए।
2: दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है।

महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुला कर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मत हो रहा है कि महारानी सीता की

0: खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए।
1: ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का?
0: अभी तक कुछ लोगों का ही है।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Hey, my friends, Ricky Ramlagan here, inviting you to join me on the musical journey to the Midnight Hour every Tuesday to Friday from 4 to midnight. Your Sundar Sapna on Radio Jagriti, 102.7 FM, where I bring you the passion of beautiful, breathtaking, specially selected music and the warmth of great company. The music you know, the music you love, the music you want to listen to on your Sundar Sapna. Your enchanted journey to beautiful dreams.

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

ओम हर हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय हो। भक्त प्लीज स्टैंड एवरीबॉडी वोट फॉर सदगुरु, प्रेफर फॉर मैन आरटी फॉर लॉग्ड इन डू आरटी दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू। भगवान श्री राम वांट्स टू ब्लेस एवरीवन एवरीवन। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू।

0: है कि दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूं कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

दम दम दम दम दमरू बजाई शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया दीप जगाए शिव शंकर कैलाशपति।

0: बोलो श्री अयोध्यापति रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गुरु रामानंद स्वामी की जय, आर शक्ति जगदम्बे माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, सर्व देवी सर्व देवता की जय, साधु गुरु के दंडवत जय जय सीताराम। आपकी आसन लीजिए, काइंडली टेक योर सीट। आई पास यू ओवर टू पंडित राजेंद्र दिस टाइम।
1: प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मैं रामेश्वरम मंदिर के लिए आपको स्वागत करता हूँ। व्याश्री कीर्तन मंडली, भक्तजन, डिवोटीज, यात्रा के लिए हम आते हैं बिकॉज ऑफ द पर्पस द यात्रा, एंड वी हैव गैदर्ड टू जॉइन कीर्तन ऑन बिहाफ ऑफ द रामेश्वर मंदिर। कॉर्डियल वेलकम टू ऑल। पंडितजी वुड हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम quite Sandy Grandy to be here today to join with us in satsang. Nath Maharaj Ji and Kirtan Mandali devotees, Pandit Anil, Pandit Hari Bachan, devotees from all the various mandirs throughout the Salt region, we are very fortunate and privileged to be here to have this opportunity to join together in satsang, and also to remember our loved ones that would have passed away, everyone that came today, that on behalf of the Mandir Committee, the president is at this point in time by Dr. Orders. He's following proper procedures, so he had asked me to this welcome. And you'd notice here we have on the table, so during the course of the Prabhat, after the service, you can just come for a few seconds. And we have some the chulha on display. You see a dholak, the lodha, certain utensils and the items that we'd always remember and cherish these moments. So I'll just chant one shloka, and without further ado, I believe. So we all pray. I'll see you bow heads in prayer. Yes. Om Krishnaya Namaha Apadam Paharataram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Puyo Puyo Nanamyaham Shri Ramam.

जगो ननिदे दमोदरा माधवा हे कृष्णा कमलापति यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मम। ओम वसुदेवं सुतं देवं कनुषचानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं।

जिए सखा सहित भगवान कपीरूपे गदाहस्ते सर्वराक्षस मर्दनम आवहनं कर्म वीरं सर्वलोक सिद्धिप्रदम मनुज वंगमारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमातं वरिष्ठम वदात्मजं वानर युत मुख्यम।